तेरे दर्शन को हम बारे। आप जी दी पवित्र बाणी विचों ए शब्द किवें अकाल पुरख तो सड़के जा रहे, किवें बलिहार जा रहे हैं।

चल के विखाया। जे आप जी ने लिखिया है जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जैसा अमृत तैसी बिख खाटी, जैसा मान तैसा अभिमान, जैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त। संसार विच ऐसा होके विचरना बड़ा मुश्किल है कि जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, सोने नू और मिट्टी नू एक समान समझना, मान और अपमान नू एक समान समझना बड़ा मुश्किल है, अमृत और जहर नू एक समान समझना कोई मखौल दी गल नहीं। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक एक अखर ते चल के विखाया। साई मियां मीर जो समय दे पूर्ण पुरुष सन, जिन्होंने श्री हरिमंदर साहब की नींह रखी सी, जद ए सुखमनी साहब जी की पवित्र बाणी सुनी तो बेनती की, गरीब निवाज कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संसार विच है भी सही जेड़ा सोने ते मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे, मान और अपमान नू एक समान समझे, कोई है भी सही ऐसा मनुख? तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मियां मीर जी समा आवेगा तुहानू आपे ही पता लग जाएगा भाई ऐसा मनुख है जां नहीं। जदों समा आया धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी तत्ती तवी ते बैठे हन, किथे आप दा पवित्र शरीर मखमलिया और सोहनिया सेजावां ते बैठदा सी, मखमली गद्दियां ते बैठदा सी शरीर, हजारां प्यार वाले श्रद्धालु गुरु के सिख फुलां दी वर्खा करदे सन, सैकड़े गलां विच हार पाउंदे सन, सिर ते छतर अते चौर झूलदे सन, किथे इतना सत्कार ते किथे अज धन गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बैठे हन, अग बल रही है ते चौर दी थां ते गर्म रेते दे कड़शे साहिब जी दे शीस विच पाए जा रहे हन, ते गुरु अर्जन देव पातशाह फिर भी मुस्करा रहे हन, चेहरे ते कोई आभा है, ओही नूर है जो सशोभत मखमली गद्दियां ते बैठ के वेख्या सी, अज ओही नूर ओही आभा अज गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चेहरे ते देख के साईं मियां मीर जी दे नैन कटोरे भर आए। गरीब निवाज एक ही कौतक है, आप समर्थ पुरख हो, आप चाहो ता एक अख दे फोर विच धरती नूं पुठियां कर सकदे हो, एडी समर्था दे मालक हुंदियां भी आप इतना कष्ट सहार रहे हो, उच्चारण करो श्री। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, साईं मियां मीर ओ बचन चेते करो, कदे तुसी पुछया सी कि कोई ऐसा पुरख है जो मान और अपमान नू एक समान समझे, सोने और मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे। क्या गरीब निवाज आप जी ने एक एक अखर ते चल के दसिया, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपका शरीर तत्ती तवी ते बैठा होवे, सारी प्रकृति सारे आप दे हुकम विच खड़ोते होन। ए पातशाही तां क्या है, लोक परलोक दे आप पातशाह होंदे होए भी इतना कष्ट सहार रहे हो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मियां मीर इस चम दे नाल प्रीति क्या करनी है,
प्रीति चामशों क्या किया। जे प्रीति करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दे नाल प्रीति कर। इस चमड़े दे नाल क्या प्रीति करनी है, ए ता एक दिन मिट्टी हो ही जाना है। तन तप रहा हम शांत है हरि नाम से। गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे जे साडा तन तप रहा है गर्म रेते दे करशे पै के तत्ती तवी ते तो कोई गल नहीं की होया। क्योंकि आपने लिखिया सी तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए। ते ओई कौतक करके आप विखारे सन आख्या मियां मीर तन तप रहा हम शांत है हरि नाम स्यों। जे तन तप रहा है तो की होया, नाम जप के साड़ी आत्मा साड़ा मन तो शांत है ना। प्रीति चामसों क्या हुआ। मियां मीर ने सेजल नेत्रां दे नाल आख्या हे गरीब निवाज मैं ए दुख सहार नहीं सकदा। गर मुझ को हुक्म दीजे जालम को जान से मारूं। जे तुसी नहीं कोई शक्ति विखाउंदे तो मेरे विच समर्था है। जे आप कृपा करो मैनू हुक्म करो ता मुझ को हुक्म दीजे जालम को जान से मारूं। आर उनकी शाह रग पर रख दूं अभी दो धारा। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने ओ शांत स्वरूप ओ बाणी दे बोहत ओ नाम दी मूरत गुरु अर्जन देव पातशाह सुनते ही सतगुरु ने शांति का कुल्फ खोला। पाना ही पाना कह कर जलते हुए को ठारा। आख्या भाई असी पाना मनना है और पाना मन के दसना है। अगों किस तरह सेवक मनंगे जे मैं आप नहीं मनांगा। उच्चारण करो श्री। मियां मीर ने आख्या गरीब निवाज मैं ए वेख नहीं सकदा के आप दे रोम रोम विच शाले पै चुके हो। ऐसा दुख तां गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे मियां मीर जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले, जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले उतने सिख होंगे सिदक वाले। उतने ही प्यार वाले सेवक होंगे भाई। इसलिए असी पाना मन के दसना है। आज जिस तरह पतंगा आके शमा तो कुर्बान हो जाता है, जे सेवक अपने मालिक तो कुर्बान नहीं होया तो सेवक कदा होया। उच्चारण करो श्री। इसलिए हजूर बख्शिश कर दिया हे वाहेगुरु तेरे दर्शन को हम बारे। तेरे दर्शना तो मैं बलिहार जाता हां सदके जाता हां और यही दात तेरे

सुबह करके और सात समुद्र की मत कहो, काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन खाज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो, काल कृपा

अंत न कयो भैया कोट फराद हमारे कयो कोट फराद हमारे कयो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आ

इस वास्ते चला जा। महापुरुष मैं नहीं जाना, महापुरुष तेरी साध संगत तू जावा एडे वसदे रस्ते घर तू खाली। दरबार ने फिर भी समझाया, महापुरुष नहीं गए, आखिरकार मैं अंदरों बाहर आ गया। तकिया दरबार नु पूछे, दरबार ने क्यों खड़ोता है, सेठ जी बड़ा यू किया है जानता नहीं, चला जा। महापुरुष हंसता कह लगे नहीं जा, कुछ लैके जा। मैनु क्रोध आ, साहबा ने श्री सुखमनी साहब जी के अंदर आप रोज पढ़ दे गुण गावत तेरी उत्तर सुमैल। जो जो साहब के गुण गाओगे त्यों त्यों मन निम्रता में आएगा। मन दिन गरीबी, गरीबी का यह नहीं मतलब है मैले कपड़े पाने या निर्बल होना, इनू तो दलिद्र के। गरीबी का मतलब है निम्रता। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक इहा मुकत आके सुख पावे। गुण गावत तेरी उत्तर सुमैल, बिरस जाए हाँ मैं बिरस। इस वास्ते साहबां दे गुण गाओ ने सारे ओ साहब। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना ते हर करी पढ़ी। जिस बापू की गौर च बैठी मालिक की रहमत प्राप्त कर रहे हो, आओ मुक्ति भी पवित्र करो। सारी गाय

दुष्ट दमन तू संसार ते जा। कहिंदे ने मेरा मन नहीं करदा तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है। पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करदा किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे बच्चे नूं आखदे ते मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदे न आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आखदे न।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंते को है सो जानू काचा।

तो तुमसे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

कर बाहिर तेरा प्रवासा, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने, नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने का तान, जन को प्रभु अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी हा मसलत परवा, चरण शरण हम अनाथ ना थकन, अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे, किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायण तन पाल साखी।

जास रसन हर हर जस पणिए आए बसे साधु के संगे अनदिन नाम त्यावे रंगे आवत सोजन जेड़ा नमे राता जांको दया मया विधाता ओ बंदा आउंदा है ठीक है जांदा भी है ठीक है पर ओदे आउन दी गल वखरी है हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे वखरी गल है एक कै आवन फिर जोन ना आया नानक हर कै दर्स समाया आया कमाई कीती जिंदगी सफली कीती गया प्रभु दे दर्शना विच समा गया स्वाद आया आउन दा आनंद आ गया जान विच ओदा आउना जाना उना वर्गा नी जिन्हां दी गल आपां पढ़ने आया गया मोया नाम उना दे आउन जान दी गल हो रहे सुते हुए लोकां दी जीवन नू ना समझन वाले लोकां दी मौत तो ना जागे लोकां दी गल हो रहे जीवन प्रति सजग लोकां दी कहानी वखरी ओ सच्चे वाहिगुरु नाल जुड़े हुए आउंदे तां ओ भी ने जांदे ओ भी ने पर उन्हां दी

मैं मन की हालत किथे जाके कूकां ते पुकारा तेरे दर तो बिना कोई आसरा नहीं मेरे मालिक रहमत करो ते जोड़ लवो टुटे होए नू बिछड़े होए नू अपने चरणां नाल जोड़ के सतसंगत दा आसरा बख्शिश करो इथे मेरा मन टिक जाण।

0: कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे गुरु कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुरु नैन पैन गुर गुर करो
1: गुरु नैन
0: पैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कहे गुरु सत कव नल कहे जिन गुरु न देखियो ने कियो अगर

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

चाहिदा है तैनू तेरा पति परमेश्वर मिलिया है, रोना मैनू चाहिदा है जिनू अजे पति परमेश्वर मेरा मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया। मालक रहमत करे मैनू भी मेरा पति।

नई बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

कतहु सुचेत हो के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो।

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत कतहूं

कऊ देवतान के दीवान में विराजमान, कऊ दानवान को गुमान मत देत हो। कऊ देवतान के दीवान में विराजमान, कहू दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगीस करते जोगा, लाख पोगीस भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बाहर दिया, तेरा अंत न पारा।

कौन साधना कितने एक बार अरब के आरबी अराध्य तेरु नाम है। फारसी फरंगी माने कलदारी कूड़ा सीधाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम गए मरहट्टा मंगल तेरी मन सुन तपस्या कर मरहट्टा मंगल तेरी मन सुन तपस्या कर।

दिल्ली के दिलवाले तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावारिया। रोके रुगेले मग देश के बंगेले भी बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं। गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे गुन गावे।

तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्व धंग तम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बहरिया तेरा

0: में आन बहुत मिल बैठत जदों सुखां दे साधन होंदे हन चार पैसे पले होन मनुख दे ता बहुत लोग रिश्तेदार सज्जन मित्र आके घेरते हन रहस चहूं दिस घेरै हर एक मनुख चाहुंदा भी मैं इस दी प्रसन्नता लवां ते जदों धन दौलत पदार्थ मुक जांदे हन ता फिर विपत परी सब ही संग छाड़त कोई दुख आ लगे मुसीबत पै जाए धन दौलत चले जान ते फिर रिश्तेदार भी मुख मोड़ जांदे हन सज्जन मित्र भी मुख मोड़ जांदे हन बल्कि परों कोई आ रहा होवे वेख लवे ते पासा वट के पासे चला जांदा है भई किदे कुछ मंग ही ना दवे उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरै विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरै घर की नार बहुत हित जांसो बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियाउंदा चंगे तो चंगा बस्तर कितने भी कूड़ कुशत गुनाह करने पैन घरवाली नूं खुश करन लई ए सब कुछ करदा पर जदों विपता पै जावे तां घरवाली भी मुख मोड़ जांदी है। हजूर दी बाणी कह रही है कि घर की नार बहुत हित जांसो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कर भागी ए झूठा व्यवहार झूठियां प्रीतां संसार दियां हजूर कहंदे ने इथों तक भी नहीं निबदियां दरगाह विच किथे कोई जाएगा भाई किथे कोई तेरी सहायता करेगा जां को मुश्किल अत बने धोई।

0: Déjame. एक प्रेमा कोड़ी होए इदे माता पिता बड़े सौखे सन घर विच कोई औलाद नहीं सी अरदासां करदे सी हे वाहिगुरु कोई बूटा लग जावे तन दौलत बेशक चला जाए पर कोई बूटा लग जावे परमेश्वर दी नेत दे नाल इसका जन्म होया ता माता दा प्यार नहीं नसीब होया माता उठ गई थोड़ा समा पाके पिता दा साया भी उठ गया इनू रिश्तेदारा ने पालिया जेड़े चंगे मनुख सन ओ ता वांडे तुर गए ते माड़ी संगत ने आके माड़े लोगां ने आके धन दौलत भी इसते पासों जितना सी लुट ली ते इनू घरों बेघर कर दिता ना माता दा प्यार नसीब होया ना पिता दा छाया रहा ना धन दौलत रही शरीर भी हुण कण कण करके घटन लगा क्योंकि जदों तन दौलत मुक जाए कोई रिश्तेदार नहीं बनता कोई साख संबंधी नहीं बनता कोई खबर नहीं लैंदा कोई मिलन तक नहीं आउंदा भाई कोई मांग ही ना पा देवे उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु
0: हुण इस ए हालत हो गई प्रेमे